नमस्कार तिसही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारी सेव कन कौ सब गुण सुख दियो सतरन कौ पल मोबद कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचरे असथूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछान घट घट के पट पट की जान जा बुद कर

जेते बदन श्रेष्ठ सब तार आप अपनी बूझी उचार तुम सब ही ते रहत निरालम।

कहूँ फूल राजा हुए बैठा, कहूँ सिमट पयो शंकर इकैठा। सिगरी श्रेष्ठ दिखाई अचंपव, याद जुगाद स्वरूप स्वयंपव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरों।

ओम प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमात्म परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे नृपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पुत्रे न पुत्रे न सत्रे न मित्रे न तत न माते न जाते न पाते न साकं शरीक है अमितो अमीक है सदैव प्रवाह है अजय है अजा है भगवती शम त्वे प्रसाद कि जा हरजूर है कि हाजर हजूर है हमें सलो सलाम है सदा समस्तुल कलाम है कि साहिब दिमाग है कि हुस्न अल चिराग है कि काम करीम है कि राज करहीम है कि रोजी देहंद है कि राज करेंद है करीम उल कमाल है कि हुस्न अल जमाल है गनीम उल खिराज है गरीब उल निवाज है हरीफ उल सिकन है हिरास उल फिकन है कलंकम प्रणास है समस्तुल निवास है अगंजुल गनीम है रजाय गनीम है समस्तुल जुबा है कि साहिब किरा है कि नरकम प्रणास है बहिस्तुल निवास है कि सर्वुल गुवन है हमेशुल रवन है तमाम लुतमीज है समस्तुल अजीज है परम परमीश है समस्तुल अदीस है अदेशुल अलेख है हमेशुल अपेख है जमीनुल जमा है अमीकुल एमा है करीम उल कमाल है कि जूरत जमाल है कि अचल प्रकाश है कि मैं तो सुवास है कि अजब स्वरूप है कि मैं तो बेपूत है कि मैं तो पसा है कि आत्म प्रवाह है कि अचल अनंग है कि मैं तो

कलह करता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादम विभूते कलंकार रूपे अलंकर अलंके नमो आशासे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अकामे वाहेगुरु अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अच्छरी शानदार

ऐसे ही ऐसे सुबैस बितायो साच कहूं सुन ले हो सबै जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो काहू ले पाहन पूज धरियो सिर काहू ले लिंग गरे लटकायो काहू लख्यो हर अवाची दिशा में

गुरु गरीब निवाज एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कवियो बात बेनती चौपाई हमरी करो हादर रक्षा पूर्ण हुए चित की इच्छा तब चरण मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतिपारा हमरे दुष्ट सब है तुम कावहो आप हादय मोहे बचावहो सुखी बसै मोरो परिवारा सेव सिख्य सब

आप हाथ दें मुझे उबरिए मरण काल का त्रास निवरिए हु जो सदा हमारे पछा श्री अस्तु जु करियो रक्षा। राख ले मोहे रखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दास कंता काल पाए ब्रह्मा अवतरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विष्ण प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जमन काल जोगी सब की ओ बेदराज ब्रह्मा जू थी ओ जमन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जग मनायो देव दैत जच्छन उपजायो आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तसिही को हमारी सकल प्रजा जिनी आप सुवारी शिवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पलमो बद कियो कटकट की अंतर की जान भले बुरे की पीर प्रशांत चीटी ते कुंचरे अस्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पिछाने कटकट के पाट पट की जाने जब युद्ध करख करा करता रा प्रजा तर तब देह अपारा जब या करख करत हो कब हूं तुम मैं मिलत देह तर सब हूं जेते बदन सृष सप्ता।

कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण शुभ राता किलवित सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को शय करता श्री अस्तु जप है।

सुने गुंग जो याहे सुर सुन पावई, सुने मूढ़ चित लाए चतुरता आवई, दुख दर्द भाओ निक न तिन नर के रहै, हो जो या की एक बार चौपाई को कह चौपाई। संबत सत्रह सहस पणिजय अर सहस फुन तीन कहित जय भाद्रव सुदी अष्टमी।

शास्त्र वेद सब वैव भेद कहे हम एक न जानियो। श्री सुपान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तो हे बखानियो। दोहरा

पौड़ी सच्चा साहिब एक तो जिन सच्चो सच वरताया जिस तू दे तिसमिल सतात ने हच कमाया सतगुर मिले पैन के हृदय सच बसाया मूरख सतन जानन मन मुख जन्म गवाया विच दुनिया काहे आया विच दुनिया काहे।

तो मुख अंतर पाए जज महजोर छले चंद्रावल कान कृष्ण जादम पहया पार जात गोपे ले आया वृंदावन में रंकिया कल मह वेद त्रमण हुआ नाव खुदाई अलोह पहया नील वस्त्र कपड़े पहरे तुरक

सेवक सेवा करे जिस हुकम मनाए सी हुकम मने ओ प्रवान त कसम के मर पाए सी कसम पाव सो रखो कसम पाव सो करे मचिन जा सो पल पाए सी तांद्र गह पैदा जाए सी तांद्र गह पैदा जाए सी।